0: बंधन पर कछु ना होवे उपाय कहो नानक कब कोट हर अब गज जो हो सहारे बल होवे बल मन छुटे सब किछ हो छुटे नानक सब किछ तुमरा हाथ मारे तुम ही हो
1: Get up there.

प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया कि धौमानी महमान हो विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो के शत्रु न के सूल हो के मित्र न के प्राण हो कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को बिखाद कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूर्ण भगत हो कहूँ वेद रीत कहूँ विद्या के प्रतीत कहूँ नीत अनित कहूँ ज्वाला सी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ एकांति को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो कहूँ बार देत कहूँ छल सोच नाय लेत सर्वकाल सर्व ठौर एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोग हर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कहू न देखत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जारे जार संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कुदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप बलि बेध न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहां भय पूपत अंत कौ नांग।

भूत भविक भवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सिधारे। तीरत नान दयादम दान सो संयम नेम अनेक बिसेख है। वेद पुराणक तेब कुरान जमीन जमान सबान के पैख है। पौन आहार जतीजत दार सबै सो विचार।

बिन एक नाम आधार सब करम परम बेचार। तो प्रसाद लग्न राज छंद जले हरी थले हरी उरे हरी बने हरी गिरे हरी गुफे हरी छिते हरी नबे हरी इहां अरी उहां हरी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरी अभेख हरी अधो करी अद्वेख हरी अकाल हरी अपाल हरी अछेद हरी अभेद हरी अजंत्र हरी अमंत्र हरी सुतेज हरी अतंत्र हरी अजात हरी अपात हरी अमित्र हरी अमात हरी अरोग हरी अशोक हरी अपरम हरी अकर्म हरी अजय हरी अभय हरी अभेद हरी अछेद हरी अखंड हरी अपंड हरी अडंड हरी प्रचंड हरी अतेव हरी अपेव हरी अजेव हरी अछेव हरी भजो हरी तपो हरी तपो हरी जपो हरी जलस्तुहि थलस्तुहि नदिस्तुहि नदस्तुहि वृचस्तुहि पतस्तुहि छितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि पजस्तुअंग रटस्तुअंग ठटस्तुअंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुही अभय तुही अछू तुही अछय तुही जतस तुही व्रतस तुही गतस तुही।

कहां पयो भेड़ सोग सात सीस वृक्षन सो माटी को बचैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध मैं प्रवीन एक भावना पहीन कैसे पेटा पार लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घनो घर करियोई करत है एक पाए ठाडे सदा बन में रहत ब्रिछ फूक फूक भाव पूमा श्रावग तरत है पाहन अनेक युग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश बिच रत है ज्ञान के बहीन महादान मैं ना हूँ जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगिया बैरागी बनाए कब हूँ सन्यास बेस बन कै दिखावई कहूँ पौन आरी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंड दारी हुए के लोगन प्रमावई कामना अधीन प्रियो नाचता है नाचन सो ज्ञान के बहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गिद्दर पुकारे परे शीतकाल कुंचरो।

0: चांदी बनाए गाही स्वरूप जैसे एक काल नाम का कोट आग से न्यारे न्यारे होए के भाग में न्यारे न्यारे होए जैसे एक कुर्दे ने एक तुर पूरक से एक तुर दूर के ने का फिर दूर ही समाहेंगे जैसे एक नद के दाना के कोट उपस जातना है तरान के तरंग सब जापानी आएंगे ऐसे विश्व रूप के हाली के भूत प्रकट होए तो रूप पानी के भूत भूत प्रकट होए ही मासी देंगे कहते माछ माछ कहते कौन को करात माछ कहते आछ बच होए पक्ष उड़े जाछ के होए कहते माछ भी जाछ के को करेंगे नाच कहते पक्ष तो कर्म के पाए खाए जाएंगे जल कहां खाला कहां के ने के जल कहां काल के बिना सब कहां की चपाल के तेज जीव अति पानी में तेज जैसे तेज जीव पानी ते उपाय सब पाई नहीं समाहेंगे पाई में समाहे भूख दे फिरत के तेरो वत मरात के जल में डूबे हो के
1: अच्छे अच्छे स्वरूप

कहूँ सूद शेखर कहूँ ब्राह्म तर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल चर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह नेहं कहूँ त्याग रेहं कहूँ जोग पोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हरता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाग्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजतानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र नीतं कहूँ शस्त्र तारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुलाचार गीत चर्चा कहूँ बिन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाग्या कहूँ वेद गीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बानी कहूँ गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या अभूषण प्रभा हो कहूँ छल छाला तरे छत्र तारी कहूँ राज साजन धीराधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अच्छे दी अच्छे आद अद्वै विदाता ना त्रस्तं ना

अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप अद्वय अनाश अनटूट तेज अनखंड भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अनछिज्जगात कर्ता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत तराम जह शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जह पुत्र प्रात नहीं मित्र मात जह कर्म परम नहीं कर्म त्यान जह नेह गेह नहीं व्योम बान जह जात पात नहीं शत्रु मित्र जह नेह गेह नहीं चहन चेत्र जह रंग रूप नहीं राग रेक जह जन्म जात नहीं परम पेक जह कर्म परम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं मित्र मात जह नाम थाम नहीं वर्ग व्याध जह रोग शोक नहीं सत्र साध जह त्रास वास नहीं देह नाश जह आद अंत नहीं रूप रास जह रोग शोक नहीं जोग जुगत जह त्रास आस नहीं पुम पुगत जह काल ब्याल कटियो ना अंग अक्षय स्वरूप अभय अभंग जह नेत नेत उचरंत वेद जह अलक रूप कथत कतेब जह अलक रूप आसन अडोल जह अमृत तेज अक्षय अतोल जह ध्यान काज मुन जन अनंत काली कलप जोग साधन दुरंत तनसीत काम बरखा सहंत कई कलप एक आसन वितंत कई जतन जोग बदिया विचार साधंत दब पावत न पार कई उर्द बाह देशन ब्रह्मांत कई उर्द मद पाव झुलांत कई सिमृत शास्त्र उचरांत वेद कई कोक काव कथद कतेब कई अग्न होत्र कई पौन आहार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साख पै पत्र पाच नहीं तद बतेव होवत प्रताक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र वृद्धिया प्रतीत कहूँ वेद रीत जगदा जगयाद कर्म कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ तराम कई देश देश भाकार डंट कई देश देश विद्या पणंत कई करत भांत पातन विचार नहीं नैक तास पायतन पार कई तीरथ तीरथ परमत सो परम कई अग्न होत्र कई देव कराम कई करत वीर बदिया विचार नहीं तद तास पायतन पार कहू राजरीत कहू जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचल सो करम न्योली आद करम कहू हस दान कहू अश्वमेध मघ को बखान कहू करत ब्रह्म बदिया विचार कहू जोग रीत कहू वृद्ध चार कहू करत जच गंधर्व गान कहू धूप दीप कहू अर्घ दान कहू पितृ कर्म कहू वेद रीत कहू नृत्य नाच कहू गान गीत कहू करत शास्त्र अमृत उचार कई भजत एक पग निरातार कई नेह देह कई देह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई

अनूप रूप स्वरूप है अचीज तेज मानिया सदीव सिद्ध सिद्ध दा प्रताप पत्र जानिया नराग रंग रूप है नरोग राग रेख है अदोग दाग दाग है अपूत ब्रह्म अभेक है न तात मात जात है न पात चहन वर्ण है अदेक असेक अभेक है सदीव विस्पर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वपर्ण है जमी जमान कै बिख सदीव करम परम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिया सदीव सर्व ठौर मैं विशेक आन मानिया न जा

न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होता है न हान है न बान है समान रूप जानी है मकीन और मकान अप्रमान तेज मानी है न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है।

गुड़ गौड़ ना पील पी कर ब्रह्म बेक ब्रह्म शेक स्वरूप रात दिवस ना मद उर्द ना पूम आकाश अनूप जात जन्म ना काल कर्म ना तरम कर्म बेहीन तीर्थ जातना देव पूजा गोर के ना अधीन सर्व सप्त पतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरन होत सोध सोध हटे सब असुर विरोध दानव सर्ब गाए गाए हटे गंधर्व गवाए किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महाकब गड़त गाड़ अनंत हार हार कहो सबू मिल नाम नाम दुरांत वेद भेद ना पायो लखियो ना सेवक तेव देवतानो मूड मानो जचना जाना जेब पूत पाव पवान पूपत आदनाथ अनाथ अगन बाए जले थले मैं सर्व ठौर निवास देह गेह ना गे नेह स्नेह अबेह नाथ।

दुर्जल दंडन दं असुर बेहंडन दुष्ट निकंदन आदिवृते चिछरासुर मारण पतत उदारण नरक निवारण गूढ़ गते अछे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उडंडे अलग मथे जा जा हो सी मैं खासुर मर्दन रामक परदन छात्र छिते आसुरी बेहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मोंड बेहंडन धूम्रब ध्वंसन मैख मते दानो प्रहर प्रहारन नरक निवारण अदम उदारण उर्द

नेहा बरकत अगे अच्छा है जान को दे तो अजान को दे तो जमीन को दे तो जमान को दा है काहे को डोलत है तो मरी सो सुंदर श्री पद मा पतला है रोगन ते अरस।

तरैया छत्र धारी योग छलैया महा शत्रुन के साल है दान के दिव्या महा मान के बढ़ैया अवसान के दिव्या है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया और विरोध के मिटैया महा बुद्ध के दिव्या महा मान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महा बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर बिना पार पावे ही मुला हिमालय त्यावे रोग गौर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की देव बादे आरब के आर भी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने ने जिकाम है मरहटा मघेले तेरी मन तो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने तर्मताम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा मैं चलत है रोह के रोहेले माग तेज के मघेले बेर बंग सी बुंदेले पाप पंज को मलत है गोखा गुण गावे चिन्ह मचिन के शीश न्यावे तिब्बति दिहावे दुख देह के दलत है जिन्हें तोहे त्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सारब धन धाम फल फूल सो फलत है देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश गंग तान को अभेश कही आत है गंग मैं रंगीन राग रूप मैं प्रवीण और काहू मैं न दीन साध अधीन कही आत है पाई न पार तेज पुंज मैं अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कही अत है केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दही अत है केते महादीन केते प्यासे प्रवीण केते सुमेरे कुलीन केते जच कही अत है करत है विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निरतार लही अत है पूरन अवतार निरधार है न पारावार पाई न पार पै अपार के बखानी है अद्वे अपनासी परम पूरन प्रकाशी महा रूप हूँ के राशि है अनासी कह के मानी है जंत्र हूँ न जात जाकि पाप हूँ न माए ताकि पूरन प्रभा की सूचना के अन्न मानी है तेज हूँ को तंत्र है न राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र का के जानी है तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के सूदता को कर है सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विकृतता की बान है के बोध को उदार है सुंदर स्वरूप है के पूपन के पूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधना को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बोध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अबनासी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन करिंदा के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को पोकत है के दृढ़ता की बासी है योग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बोध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बोध को घर है देव को देवन को देव है निरंजन अपेव है अदेव को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंड को खंड है महीपन को मंड है के इसरिन के इसरिन है ना नर है विश्व को परन है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न पार परवार हूं को पार जा को कीजत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हब सी हलबी ध्यावे पूर बिना पार पावे आस्ते नरास है देवन को देव महादेव हूँ को देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वै अबनासी है अंजन बहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देव नाथ भूम के पुजिया मुहिया महापान के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ।

छीर कैसी छिरावाद छाज कैसी छत्रानेर छपा कर कैसी छापक कालिंद्री के कूल के हंस नीसी सिहारू हिरासी हुसैनाबाद गंगा कैसी तार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चप्पा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तेहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सियासी सुरंगाबाद निके सोही अत है हिमा सी हिमालय हर हर सी हलब्बानेर हंस के सी हाजीपुर देखे मोही अत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंदागिर चांदनी सी चंदागढ़ जोन जोही अत है गंगा सम गंगा तार पकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजारी सोही अत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाई अत है पखरी कंदारी गोर गखरी गृदे दचारी पौन के अहारी तेरो नाम त्याई अत है पूरब पल्लाऊ काम रूप ओ कमाओ सर्व ठोर मैं बिराजे जहां जहां जाई अत है पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अत

ओपन पृष्ठ गगनते भई सभैन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब नवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहल हो उबारे कब्यो बाच बेनती चौपई अमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम घावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा नज कर दय करिय सब बैरन को आज संगरिय।

गुण चरिया स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के पट पट की जाने।

सिमट भव शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तपाता सकल मलेच करो रण घाता जे उस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छाछ सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा

राख मोय मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्नि स प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहु नह ध्याऊ कान सुन पहचान नतन सो लिव लागी मोरी पग इन सो।

0: तस्मात् पुरस्मात् पाणि स्वाद अग्निखे देवडाणी तस्मात् तरते स्वाद पाणि स्वास आज लगे प्राणी तस्मात् संयोग स्वाद योग स्वाद पुख स्वाद पुख तस्मात् सब तस्मात् साला सर रहा तस्मात् मेरे स्वाद तस्मात् देख के हाजर हजूर वेख विडान रे अस्मात् नानक पूजन कृपा महला पहला
1: कुदरत से कुदरत सुनी।

औड़ी सतगुरु टवारी आज मिले कसम संभालिया जिनकर उपदेश का आनंद दिया ने नेत्र जगत ने हालिया कसम छोड़ दू जल के डूबे से मुन जारिया सतगुरु बहता लेकिन विचारिया कर कृपा।